0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Maru Mahalla Panyama Kartija Eko Ankar Sadgur Prasad प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारो अज्ञानथ होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ हरे नर ऐसी करे अज्ञानथ तज सारंग धर ब्रह्म तू पूला मोहे लपट्यो दासी संसानथ रहाओ धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ फोकट कर्म करे अज्ञानी मनमुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानत पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए बिसार हर जियो बिखै भोगै तब थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए महासागर समुंद लंगना पार न परना जाए काम क्रोध लो मोहे ब्यापेओ नेत्र रखे फिराए शीश उठावन ना कबहू मिले महादुत्तर माए सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलपाए स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाए जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पै मनिया सुभाए गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन ना पाए हरे नार इन बिद पार पराए त्याय हर जी होए मृतक त्याग दूजा पाओ रहाओ दूजा मारू महला पंजवा बाहर टूंडन ते शूट परे गुर घर ही माए दिखाया था अनपव अचरज रूप प्रपेखिया मेरा मन छोड़ना कथू जाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था मोलिया मोल ना पाया जाई कर कृपा गुरु देवाया था रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म मेरा साधु कथ कथाया था अनहद शब्द दसम द्वार वजयो तह अमृत नाम चुआया था तोट नाही मंत्रशना बूजी या खुट भंडार समाया था चरण चरण चरण गुरसेवे अगड़ गड़ियो अगड़ कड़े और

किया दिन सो सब राती, वन त्रैण त्र पवन पानी, चार बेद चारे खानी, खंड दीप सब लोवा, एक वावे ते सब होवा। करण हारा बूजो रे, सतगुर मिले तांसु जै रे रहाओ। त्रै गुण किया पसारा, नरक सुरग अवतारा, हो मैं आवै जाई, मन टिकन न पावै राई।

कलेशलिया निर्भो निरंकार दयालिया जी जंतु सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है, एक है सुपन है दाम ना छड़ है। राज कमाए करी जिन थैली ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाम महतारी। सुत मीत प्रात ते गुहजी ता कह निपटना हुई खलिया। होए अधूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी। ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते, ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता कै। साध संग पहे जन मुक्ते, गत पाई नानक नजर निहलिया। मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सोऊ। जाते बिरथा जात ना को, मात गर्भ मैं जिन प्रतपारिया। जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई विधाता खिन खिन जपिया। जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है, चरण कमल और अंतर तारो। बिखिया बंते जियो उधारो, करण पलाह मिटै बिल लाटा। जप गोविंद भरम पौ फाटा, साह संग विरला को पाए। नानक ता कह बल बल जाए, राम नाम मंतन आधारा। जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी। काम क्रोध लो मदमाता, कौडी बदलै जन्म गवाता। अपना छोट पर आया राता, माया मद मानता नु संग जाता। त्रिशन ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप बुलायो, नानक कीर्तना जाए मिटायो। पस पंखी भूत अर प्रेता, बबे जोनी फिरत्या नेता। जै जानो तै रह न पावे, थान बिहून उठ उठ फिरतावे। मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहम मेव मूठो बेचारा। अनक दोख अर बहुत सजाई, ताकी कीमत कहन न जाई। प्रभ बिसरत नरक मैं पाया, तै मात ना बंद ना मीत ना जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी। प्रहमत प्रहमत प्रभ सरणी आया, दीना नाथ जगत पित माया। प्रभ दयाल दुख दर्द विदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते कड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इस्ते किश नाही, आदि अंत प्रभ अगमा गाही। नाम देहे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत कौ डहकावो लोगा। मोहन दीन कृपाई ऐसी जान पाई। शरण सूरो गुरदाता, राखै आप वडाई रहाओ। भगता का आज्ञाकारी, सदा सदा सुखदाई। अपने कौ कृपा करियो, एक नाम ते आई। नानक दीन नाम मांगे, द्वितीया परम चुकाई। मारू महला पंजवा, मेरा ठाकर अत पारा। मोहे सेवक बेचारा, मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा। मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई, बीजो अवर ना कोई। जियन प्रतपाल समाहे, है हुसी आहे। दया मोहे की जय देवा, नानक लागो सेवा। मारू महला पंजवा, पत ते उधारन तारन। बल बल बले बल जाइए, ऐसा कोई पेटै संत। जित हर हरे हर त्याईए, मोको कोई ना जानत। कहियत दास तुम्हारा, एहा ओटा धारा रहाओ। सर्व धारण प्रतपारण, एक बिनो दीना। तुमरी बिद तुम ही जानो, तुम जल हमीना। पूर्ण बिस्थिरन स्वामी, आहे आयो पाछे सगलो पूमंडल खंडल। प्रभ तुम ही अच्छ, अटाला खयो देवा। मोहन अलख अपारा, दान पावो संतां संग। नानक रेण दा सारा,
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਗਾਏ ਸੰਤਾ ਗੁਰ ਜਾਣੇ ਜਨਮੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ਅਗਿਆ ਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ਰਹਾਓ ਅਵਗਤ ਸਿਉ ਮਾਨਿਆ ਮਾਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਗਿਆਨੋ ਪੇਖ ਸਗਲ ਧਿਆਨੋ ਤਜੋ ਮਨ ਤੇ ਅਵਮਾਨੋ ਨਿਹਚਰ ਦਿਨ ਕਾ ਠਾਣਾ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣਾ ਆਂਦਿਨ ਗੁਰਮਿਲ ਜਾਗੇ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਭੰਡਾਰ ਹਾਥ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਛੇਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ ਮਿਲਸਾ ਤਿਆਗ ਗੁਮਾਨ ਅਵਰ ਸਭ ਕਿਛ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਖਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਟ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਵਨ ਬਪਰੋ ਜਾਮ ਰਹਾਓ ਦੁਖ ਦੀਨ ਨਾ ਪਉ ਵਿਆਪੈ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਬਖਾਨੈ ਹਰ ਭਜਨ ਤਤ ਗਿਆਨ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਬਿਲਾਸ ਬਨਤਾ ਟੂਟ ਤੇ ਇਹ ਨੇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ ਜਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖ ਮੰਤਨ ਦੇਹ ਰਹਾਓ ਬਿਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਨਸਤ ਪਵਨ ਝੂਲਤ ਮੇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜ ਮਿਲ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਆਵਤ ਇਹ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸੁਖੈ ਦਾਤਾ ਸੰਗ ਬਸਤੋ ਨੀਤ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨਸੈ ਵਿਆਪਤ ਉਸਨ ਨਾ ਸੀਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਿਧਾਨਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਦੀਤ ਰਹਾਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਜਪੈ ਤੇ ਸੀਦ ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਚਤਰ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੰਗਬੀਦ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਆਵਤ ਇਹ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਰਖ